मा प्रतिनिधि भेला केन्द्रीय कार्यालय मढेला बर्दिया यही असोज 23 गते अध्यक्ष विश्वासिलो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ठाकुर बाबा नगरपालिका 8 मढेला बर्दिया।

सम्पर्क गुरुङ हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, गुरुङ मेडिकल हल, मंगलगढ़ी चोक, सुर्खेत। फोन नम्बर 083-522-148 र 520-702।

0: लोकल ठाकुरबाबा नगरपालिका एक कञ्चनपुर जाने बाटो खुरी गाउँ बर्दिया। प्रोपराइटर हेमराज आचार्य। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98482979774।
1: सूचना समाचार अनि मनोरञ्जनको साथी।

प्यार का ड्यूएट गाते गाते जब हीरो हीरोइन ऐसे लॉन्ग शॉट में चलने लगे तो समझ लीजिए लव स्टोरी खत्म, दी एंड, और जिंदगी का पहला चैप्टर शुरू, सगाई।

यो हो रेडियो टाइगर 90.2 मेगाहर्ज। रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम। यति बेला साँझको 5 बजेको छ।

अगर आपके बाद इस जिंदगी में केकरो आगमन है ना तो उम्र जरूरत नहीं, बाध्यता रही। हाँ, बाध्यता रही।

0: 龙阿哟，呀阿哟，呀阿哟！
1: 喂呢，八个呀呀队，龙阿哟阿哟，问题就到家。
0: 我等你 ，Radio Tiger 阿哟。
2: युहो रेडियो टाइगर 79.2 मेगाहर्ज गर्जन सस्नदै बाघसिंह रेडियो टाइगर स्टुडियो टाइम यति बेला साँझको 6 बजेको छ।

0: सबको सोन सरोवर बुला लिया है, इकट्ठे रहेंगे। काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई, लाओ मैं बनाता हूँ मिठाई।

रूठ कर दिल को मेरे क्यों ऐसे तड़पाती है, इस दीवाने को तरसा के तू कहाँ जाती है। अख से मिला ले जरा आंख सुनिए ओए गुस्से न तू।